प्रचंडन ज्योतिमंडन पाप्रभं सुख संता कारणन दुर्मत दानन किल विकारन आसान जय जय जगकार सिस्ती उपार मंत्र पार जय ती गंगा खंड बिहंडन कल्लन खंड